चंद्रली म्यूजिक प्राणी को छोरी अर्को धमाकार तथा दोरी कृति चन्द्र बर्खा लाग्यो आरबीजी नम्बर 01600 29008 01600 29008 आरबीजी नम्बर 6053-5893 6053-5893 सी आरबीटी टी आरबीटी प्राप्त अनि सुन्न नबिर्सनु होला।

0: அப்பே என்னையே பாட சொல்லி வாஸ்கோ டிவி போக்குற ஹெடியோ நீக்கே அவதாரமா சாவுத்த
1: கட்டை பரி லைலை வாஸ்கோ டிவி போக்குனு நீ பிட்டி ஆஸ்னே டிவி பிக்கியோ அனி பனவுன ஜனல் லாகி குடி பனவுனே புக்கா உலாட்ட ஓயினே
0: त्यति कुरामा पनि चिन्ता गर्नु पर्छ त सदरमुकाम चरीकोट बाटो चरी घ्याङ जाने बाटोमा रहेको हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्समा लैजाऊ न त्यहाँ त तिम्रो बिग्रेको टिभी मात्र होइन कि मोबाइल घडी सबै पनि हाल्छ नि सकिगयो नि
1: त्यसो भए म पनि त्यतैतिर लागिहाल्छु नि होइन त
2: अब आउनुहोस् हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्समा 32 इन्च देखि माथिको एलईडी किन्दा 200 सिप्पीमा यहाँ फ्रिज डी फ्रिज एलईडी एलसीडी टिभी मोबाइल साउन्ड सिस्टम सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथै सबै प्रकारका टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत गरिन्छ यसका साथै विवाह गोष्ठी सेमिनार व्रत बन्ध र अन्य कार्यक्रमका लागि साउन्ड सिस्टम भाडामा पनि पाइन्छ
3: टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान मर्मत गर्ने ट्रेनिङको पनि सुविधा छ यसमा विशेष गरी 5 जनाको समूह बनाएर आएमा 1 जनालाई छुटको पनि व्यवस्था गरिएको छ
4: प्रोप्राइटर नरेन्द्र चौधरी चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स चरीकोट चरीख्याङ थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9844391042 र 9844061814
5: कस्तो खल्लो दुध पानी मिसाएको रहेछ हामी त खाँदैनौ

नया नेपाल को नया आवाज आवाज विहीन को आवाज जन आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ज़।

0: quicker, quicker, quicker. Ah, oi. Viu, Leandro? Olha, tá tudo.
1: Ah, o Beijo! Ah, o Beijo!
0: Ah! Oi! Ah! Fica, fica, fica! Ah! Oi! Ah! Oi! Ah! Fica, fica, fica!
2: शिवपुरी देखी हो तुझे कसी पाई चूरी खेल माचुस कई है न खेल गारे को साते हो भने को चूरी खेल माचुस कई मानसे सानी सानी है न काली नानी की ना हाथे हो झपई फिर गर्भा को छाइना।

ने घर बनाया था उन्हें बारे माँ सीधा की जग पत्ता को सी ना जरे भाई ही ना बारे माँ सीधा की जग।